चार ज्योतिपाल दशम से तिस्साई सिटे दशम से असु हतदक्वा जीवतुनत श्रीलंका सिनेमा गीते अमरणीय राजुले से सलकन जान हुर्दे दे अमरणीय म गायक ओगे मुर्दु सुवंद देन सत्वा बावे पिरुनु हंडे श्रीलंका संगीते असम सम सटानक तबुआ सिनेमा गीत तुंदागर अधिक प्रमाण गायना कल ओहु ओब माहट दुन सेनेस सांद की निसंद की मगे रामन के ओबट मगे आदरवेन गीत अद जनप्रिय ओगे हंडट तिबु सुवंद संवेदी सत्य मनुष्य में पिरुनु जनता ओगे सिद्धि नागत्ता रूपवाहिनी सिनेमा वेदिका संगीत शेलुम शेस्त्र सुविशेषी सटाणक ओतबातिबिनो ज्योतिपाल के गीत असनविट अदट सितट सोयक मतक सुवंदक सह अमरणीय संगीत रसयक लभिनवा

टोनी हसन श्रीलंका संगीत सा हिंदी जनप्रिय संगीत विशेष स्थानीय जनाद रेट आदरणीय गायक ओगे सतुट मत नर्तन में वेदिका सजीवीकरण गायन शैल्य निशा ओगे बाइला सा अनिकुद गीत लोक प्रसिद्ध नाम बहुत पत्तुना इदस नम से हत्यावत असुअ दशक बाइला संगीत नव शब्द सा सजीवीकरण गिना कलाकार ओगे गीत वोट तिबु सरलत्व सतुट सा जनता व समग सृजु संबंध निशा ओगे गायन विशेषात्व गता उत्सव विवाह सा सतुट अवस्था वल्दी ओगे गीत अदत अनिवार्य वादने वेनो सिंगल संगीत जनप्रिय कल पायनियर्स अतरट ओगे गी नमद अतुलत वेनो टोनी हसन गे संगीत अदत जीवमान सतुट नर्तने सा श्रीलंकीय श्रासे मतक करना अमरणीय हांडा

सुनील सांत दस नम से पाले उपतलबा दस नम से आसुग के साधारण विन्वगे श्रीलंका संगीते पुरोगामी अतिसे गाउरवेट पात्रो संगीतज्ञ कुसहा गायके ओ श्रीलंका संगीते ते स्वदेशीय रसे नव सुरवींसा निर्माण शीलत्वे गिना आयक सिंगल संगीते ते स्वदेशीय हंडक नव मंपेतक सहा सत्य रसक गिना प्रमुख कलाकारु ओगे गीत सरल गैंबुरु संवेदिसा श्रीलंकीय संगीते म हदवतट लंगावन रसक गिनेनवा संगीत अध्यापने गीत निर्माणे सा सुरवीम तुल ओगे दायकत्वे श्रीलंका संगीते इतिहासे विशाल सटाहनक कला सुनील सांतगे गीत अदत असन विट श्रीलंकीय संगीते सत्य रसे निर्माणशीलत्वे सा सौंदर्य तावमत जीवमानाई

एंटन रोड्रिगो श्रीलंका बैला सा जनप्रिय संगीत विशेष स्थान जन हृदय आदरणीय गायक ओगे सतुटुमत नर्दनमय वेदिकाव सजीवीकरण गायन शैली निशा ओ बैला लोके अमरणीय नामक बवट पत्तुना हेत्तव असु दशके बैला संगीत नवरसज्ञ जनप्रिय गायक मेनिके मालिकावे सीनिमल्ली मल मेनिके वेनी जनप्रिय बैला गीत ओगे नामे समग संबंध उना ओगे गायन शैल्य सरल सतुटु सा जनताव समग सुदु संबंधक एतिकल विलासितावकिन पिरी तिबुना उत्सव विवाह अवस्थावलदी पवा ओगे गीत अनिवार्य वादने उना एंडन रोड्रिगो संगीते अदत जीवमान सतुट नर्तने सा श्रीलंकीय बैला रसे मतक्रवण अमरणीय हंडाक

प्रिंस उदय प्रियंत इदसम से हत्ते उपतलवा देदास दाते श्रीलंका विंग सदाटम वेन्वगिय जनप्रिय संगीते अतिशय संवेदी मृदु हदवतट अतुलन गायकेकुलेस जना दरेट आदरणीय कलाकारु ओगे गीतवल तिबु सेनेहास दुक मतक सुवंद सा सत्व बाय निसा ओगे हंड थावमत जनता ओगे सित्तुल जीवमानाई अणुव देदा दशके प्रेम गीतोल विशेष स्थानीय लबागत ओहु संदवतियाई मगे मनमाल्य संद तारका मले ओबमा हट दून सेनेहास संद मले मगे मले वैनी गीत ओगे नामे अमरणीय कला ओगे गायन शैल्य सरल मृदु सा गीते हंगीम सुजुम प्रकाश करण विलासिताव किं प्रीति बुना जीविते अभियोग अतरत ओगे संगीते जनतावट सिनेहास सुए सा मतक सुवंदक लबा दुना प्रिंस उदय प्रियंत के गीत अदत असन विट सितट मृदु सुयक सिनेहासक सा अमरणीय संवेदी रसयक लेबिनो

गायन शैली सरल नियतमानी सा हदवत सुजम लंगावेन विलास सितावकिंग प्रीतिमुन निसा सिनेमा गीत रूपवाणी गीत सा वेदिका संगीते ओसे ओहु श्रीलंका संगीतेट अमरणीय सटानक तबुआ प्रिया सूर्यसेनगे गीत असनविट अदत सितट सोयक सेनेयासक सा अमरणीय मतक सोंदक लबिनुआ